0: राजकुमारी सूर्पनखा,
1: वो मोहित हो गई है आप पे।
2: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सूर्पनखा, न राम की मृत्यु साधारण होगी ना उसका अपमान।
3: रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लूंगा।

0: राजकुमारी सूर्पनखा
1: वो मोहित हो गई है आप पे।
2: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सूर्पनखा, ना राम की मृत्यु साधारण होगी ना उसका अपमान।
3: रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लूंगा।